नमस्ते, आप सब 107.8 FM सुन रहे हैं। इट्स आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। मैं आपके आरजे पार्वती बोल रही हूँ। आज हम हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे आपके लिए एक कार्यक्रम लाए हैं। आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। पहले हम भगवान की प्रार्थना से शुरू करते हैं।

0: भगवान की प्रार्थना सुनकर मन में शांति प्राप्त होती है। अब हम सुमन से महंगाई की समस्या के बारे में एक भाषण सुनेंगे।
1: महंगाई की समस्या। आज सारा विश्व महंगाई की समस्या से पीड़ित है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जिससे पूछिए वही कहता है कि हम महंगाई से बहुत दुखी है। गुजारा नहीं होता, चाहे कितना ही धन कमा कर लाए तब भी दिन नहीं कटते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रति वर्ष महंगाई बढ़ती ही गई है। अब प्रश्न यह है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, इसके क्या क्या मूल कारण हैं? महंगाई के लिए सबसे प्रबल कारण युद्ध होता है। जब दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तब चीजों की आवश्यकता सैनिकों के लिए बढ़ जाती है। सरकार माल खरीदना आरम्भ कर देती है। ऐसी दशा में चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। कई बार रेलवे भी सही समय पर कोयला नहीं पहुंचाती है तो नगरों में कोयले के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बाकी यातायात के साधनों की कमी के कारण भी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अनाज और वस्त्रों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हड़तालों से भी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। व्यापारी लोग दर प्रतिदर कीमतें बढ़ाते हैं और फिर इसको देखकर सरकार भी अपनी दरें बढ़ा देती है। बनावटी कमी, व्यापारी वर्ग की मुनाफाखोरी, जमाखोरी की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार आदि महंगाई के प्रमुख कारण हैं। जनता को जिन चीजों की कीमत बढ़ती हुई लगे उन्हें खरीदे ही नहीं। जब खरीदी ही नहीं होगी तो जमाखोर व्यापारी अपने आप ही चीजों की कीमत कम कर देंगे। आवश्यकताओं को कम कर देने से चीजों की कीमतें स्वतः ही कम हो जाती है। सरकार दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के दाम कभी न बढ़ने दे और इन वस्तुओं का उत्पादन ऐसे लोगों के हाथों में न जाने दे जिन्होंने कीमतें बढ़ाने की शपथ खा रखी है। तभी देश में महंगाई कम हो सकती है और जनता को सुख मिल सकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी और जनता दुखी और परेशान होती रहेगी। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सुमन, तुम्हारी महंगाई के बारे में भाषण बहुत सच्ची और अच्छी थी। अब हम छाया से प्यार भरी शायरी सुनेंगे।
2: मैं छाया कुछ प्यार भरे शायरियाँ सुनाती हूँ। सुना है प्यार करने वाले अजीब होते हैं, खुशी के बदले गम नसीब होते हैं। मेरे दोस्त मोहब्बत न करना कभी, क्योंकि प्यार करने वाले बड़े बदनसीब होते हैं। क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना होके तुमसे मिलूं, इश्क का अजब है कायदा।
0: वाह वाह वाह।
2: बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर एक अजनबी से इश्क हुआ और हम लावारिस हो गए। अर्ज करते हैं, देखा है ये दिल किसी को देना में, वाह वाह वाह वाह, गौर फरमाइए, देना है ये दिल किसी को दान में, यारों कोई माला ध्यान में।
0: कितना अच्छा, कितना अच्छा।
2: मेरे चेहरे की हंसी हो तुम, मेरे दिल की हर खुशी हो तुम, मेरे होठों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है मेरा ये दिल जिसके लिए वो मेरी जान हो तुम।
0: धन्यवाद छाया, तुम्हारी शायरी सुनकर बहुत आनंद आया। अब श्री लक्ष्मी हमें थोड़ी पहेली पूछेगी।
3: नमस्कार, आज मैं आपको कुछ पहेली सुनाने वाली हूँ। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बरकाती है पर दूर नहीं, बांधते है पर दूर नहीं, बताओ क्या?
0: चोटी।
3: हाँ सही उत्तर। ऐसा क्या है जिसका आना भी खराब और जाना भी खराब?
0: पता नहीं, तुम ही बोल।
3: उत्तर तो आंख है। लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए, बताओ कौन?
0: आग।
3: वाह, आपने तो फट से बोल दिया। लाल बच्चे जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे, बताओ क्या?
0: माँ बच्चे ट्रेन।
3: हाँ सही उत्तर। बीमार नहीं रहती मैं, फिर भी काती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सच जर जाता सुनकर इसकी बोली, बताओ ये क्या है?
0: बंदूक।
3: हाँ सही उत्तर। काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा तो दूसरी की बारी, बताओ क्या?
0: ये तो मुझे पता, तवा रोटी ही है ना?
3: ऐसे कौन सी चीज है जिसे जितनी खींचो वो उतनी ही छोटी होती है?
0: बीड़ी।
3: हाँ सही उत्तर।
0: धन्यवाद श्री लक्ष्मी, तुम्हारी पहेली बहुत दिलचस्प थी। आप प्रीतिका हमें दोस्ती के बारे में कविता सुनाएगी।
4: आप सबने यह कहावत तो सुनी होगी, A friend in need is a friend indeed। ये हम सब ने स्कूल में पढ़ा था, लेकिन उस वक्त का मतलब कुछ और था। दोस्ती जो दोस्त के काम आए, लेकिन उसका मतलब तुम सब दोस्तों के मेरी जिंदगी में आने के बाद पता चला। आखिर तुम क्यों इतने दिल के पास हो, कोई तो वजह है जो तुम इतने खास हो। मेरे दोस्तों में सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आता है, रब की कसम हमारे पिछले कई जन्मों से नाता है। LKG में रब ने मुझे तुझसे मिलाया था, उस मुलाकात में ही तुझे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाया था और उस मुलाकात से आज तक हम साथ हैं और आगे भी रहेंगे। वो वक्त मैं कैसे भूल जाऊं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था, क्योंकि तुम्हारी हर एक आदत ने दीवाना जो बनाया था। उस वक्त तुम्हारे पास कुछ दोस्त हमसे खास थे, लेकिन तुम तो हमारे दिल के तब भी पास थे। 91762 है वो नंबर है जो मैं अक्सर मिलाया करती थी, जब भी तुम्हारी पक पक सुनने को दिल तरसता था। ज्यादातर तेरे ही बारे में सोचा करती थी, यहाँ तक कि हैंडराइटिंग तक कॉपी किया करती थी। लिखावट तेरी कमाल थी और ड्राइंग तो बेमिसाल थी। तूने भी अपनी दोस्ती तब खूब निभाई, मेरे हिस्से की ड्राइंग थी जो बनाई। टीचर भी देखकर समझ लिया करती थी और मेरी जगह तेरी ही तारीफ किया करती थी। तेरे बिना वक्त मेरा कहाँ कटता था, शायद इसलिए कोई अगर तुझसे बात करे तो मैं मन ही मन जलती थी। सच कहूँ तो तू मेरे लिए एक अनजान पहेली थी जिसमें उलझने का दिल करता था। आखिर उस अनजान पहेली ने ऐसे उलझाया कि उलझते हुए भी वो सुलझने लगी। जो पहेली मेरे दिल के पास थी वो मेरे जिंदगी बन ही गई। अब तक की जिंदगी में मैंने कई अच्छे दोस्तों का साथ पाया है और सबको तेरी बातें बता बता के पकाया है। उन सबको लगता है कि तू मेरे लिए बहुत खास है और मेरे दिल के पास है। हकीकत तो यह है कि वो सब अच्छे दोस्त मेरे दिल के पास है और तेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये तो केवल रब भी जानता है किसका दिल किसके पास है। इस डर में रब से यही दुआ करती हूँ कि ये रब मुझ पे एक एहसान जरूर करना, इस दोस्त को मुझसे कभी जुदा ना करना, जुदा ना करना। धन्यवाद।
0: धन्यवाद रितिका, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी थी। अब राशिका हमें चटपटा खाने बनाने की विधि बताएगी।
5: नमस्कार, मैं राशिका आपको ओवन रोस्टेड टमाटो एंड बेल पेपर सूप बनाने की विधि बताने वाली हूँ। सामग्री: 2 किलोग्राम टमाटर, 2 शिमला मिर्च, 50 ग्राम प्याज कटा, 40 ग्राम लहसुन कटा, 600 मिलीग्राम वेजिटेबल स्टॉक, 30 मिलीग्राम तेल, नमक, काली मिर्च और चीनी स्वाद अनुसार। विधि: शिमला मिर्च व टमाटरों को काली मिर्च, नमक, तेल और लहसुन से मैरिनेट करें। फिर टमाटरों व शिमला मिर्च को ओवन में 30 मिनट 200 डिग्री सेल्सियस पर भूनें। टमाटरों और शिमला मिर्च से बीज निकाल दें। फिर दोनों को ब्लेंड कर प्यूरी बना लें। अब इसे तब तक पकाएं जब तक यह अच्छी तरह मिल न जाए। अब चीनी मिलाकर गरम गरम सर्व करें। धन्यवाद।
0: धन्यवाद राशिका, आपके ओवन रोस्टेड टोमेटो एंड बेल पेपर सूप बहुत अच्छी थी। सभी लोग जरूर अपने घर में बनाकर देखें। अब हम

पसंद आया। अगले बार जरूर एक अच्छे कार्यक्रम के साथ मिलेंगे। तब तक इट्स बाय फ्रॉम आरजे पार्वती। आप सुन रहे हैं 107.8 FM, इट्स आप रेडियो, आर कम्युनिटी, आप राइट। सुनते रहिए, बाय।